0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम टेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94
1: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
2: तिमी मसँग लभ गर्छौ? मुया के मुया क्यार न लभ गर्न परिचर बाले खोज्दा केटासँग बिहार जाने हुन्का।

0: यो कृष्ण सार एफएम
1: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक

0: ओहो आज डाई हो नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतो
1: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत
1: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहां कई जाए
0: ए ओसिनो कला से उहां जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
0: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र मा जाई न वहां ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत ओतरकेल कहाँ हो वहां तो लंबा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्तेक बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहां मिलत
0: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहां ले जाके उपचार करेले से वजह से सुन से कही ट
1: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
0: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
1: जस्तक सर्जरी के सकु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सकु उपचार नसा व हड्डी रोग के सकु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सकु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सकु उपचार सेवा देती आइल बा
0: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सकु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
1: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-239-80-665 वो 98-482-80-465

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते

0: आवा, जीर्ण रोग, कान मिहो ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगन के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथन लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली मिहो छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथन कान कम सुने वाले बिरामी लोगन के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगन के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
0: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848020697 9858023697 और 9814083697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना। और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करू
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे कृष्णसार एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो सुरताई प्यारा से कार्यक्रम लेकर आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम परसोता संचालक मियाँ जी प्रारंभिक में जो सदा साथी रहा है आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो साथी कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे एफएम 94 मेगा जो बाकी जिला वार्ड नंबर 12 बिलासपुर से ही चला था साथी। तो ये कार्यक्रम में यहाँ ऑडियो वीडियो दोनों सुना जाए देखा भी जाए तो साथी कार्यक्रम में आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए 081415122 के लाइन में नेपाल के साथी आओ जी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415122 के लाइन में आवा जी। तो साथी हमरे जो कजरी गीत जो सावन संबंध के कजरी गीत है पहले शुरुआत में सुना जाए प्यारा से कजरी गीत के बाद में हम आपका क्वेश्चन और सब बताएंगे मगर ये छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के हाँ विज्ञापन के बाद में तो कजरी गीत सुना जाए कि हाँ तो सुना जाए प्यारा से कजरी गीत।

0: हाँ तो श्रोताई आप लोग सुनागा प्यारा से कजरी गीत जो सावन संबंध के रहा है, खैर बहुत अच्छा रहा है। तो साथी ऐसे नंबर में जुड़ा जाए 081-415-1122 के लाइन में आओ जी। नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-081-415-1122 के लाइन में आओ जी। कार्यक्रम में यहाँ जो आप लोगन का क्वेश्चन रखे जाए थे, क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए। जैसे एक फूल है काले रंग का, एक फूल है काले रंग का, हाँ सिर पे सदा सुहाए। एक फूल है काले रंग का, सिर पे सदा सुहाए, तेज धूप में खिलखिल जाए, छाही में मुरझाए। एक नंबर माँ है, दो नंबर माँ है, हाथ पैर सब जुदा जुदा, हाथ पैर सब जुदा जुदा, ऐसी सूरत दे खुदा, जब वो मूरत बंधन आए, हाथों धरे वो रंग राग सुनाए। हाँ तो साथी दोनों का बताओ जाए, जब वो बंठन के आवे, हाथ धरो तो राग सुनावे। दोनों का सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जाए। तो इसे टी शर्ट कहाँ से दिया जाए आप लोग जान जाओ, जा आपके माना जाना हुआ जो ज्योति टेलर सदर लाइन में है, जहाँ से आपका पुरस्कार दिया जाए, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स डाफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार कपड़ा सब मेरे कुशल कारीगर द्वारा सिया बनाया जाता है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए। तो साथी ऐसे नंबर में जुड़ा जाए 081-415-1122 के लाइन में। ये कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था, आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगा हर जी बाके जिला वार्ड नंबर 12 बिलासपुर बाके से चला था साथी कृष्णा सारे फेम से। हाँ तो साथी ऐसे आप लोग जो मैसेज पठवा चाह जाते तो 98-55-96-306 में मैसेज भेजा जाए। और आज के दिन में आप लोग अपने मन पसंद के गाना भी सुन सका जाए, अवधि हिंदी भोजपुरी भक्ति भजन नाथ कव्वाली जो भी आपके फरमाइश है उका आप लोग गुनासो किया जाए, उका हम लोग जरूर सुनावा जाए आप लोग। तो इसे हमारे स्टूडियो के नंबर में यह एकदम जुड़ा जाए 081-415-1122 के लाइन में आवाज जाए। कैसे कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक आप लोगों के है प्यारा कार्यक्रम। कोई साथी हमारे पहला नंबर में आ चुके हैं, उनका स्वागत के लिए नमस्कार।
1: सलाम
0: वालेकुम। सलाम, आपके नाम?
1: हमारा नाम मुन्ना सलमानी।
0: मुन्ना जी आ, और मुन्ना
1: कवाली सुना दो अल्लाह जाने कौन बसर।
0: हाय
1: कवाली
0: अल्लाह जाने कौन बसर। ठीक है, क्वेश्चन के पहले उत्तर दो।
1: क्वेश्चन जो तो नाम मालूम है,
0: क्वेश्चन नहीं मालूम है। ठीक है, सलाम अलैकुम। हाँ साथी मुन्ना सलमानी रहा है, कव्वाली कहने अल्लाह जाने कौन बसर है कव्वाली सुनाए दिया जी। ठीक है, हम आपका सकबर कोशिश करवे। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081-415-1122 के लाइन में आवाज आए। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है, आप लोगन के आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फिल्म से चला थे। कोई साथी हैं देखी को कहाँ से हैं, उनका स्वागत के लिए नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, आपके नाम?
2: महेश कुमार कोरी।
0: महेश कुमार कोरी, और महेश बस ठीक रहे चाहिए। घर कहाँ, घर कहाँ है? अच्छा यार हिरमिनिया तरफ है नहीं? हाँ तो महेश जी जो क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन के उत्तर दो।
2: एक नंबर का हो छतुरी।
0: हाँ
2: फूल वाला जो मुरझाए वाला।
0: हाँ
2: और दो नंबर का है हारमोनिया।
0: हारमोनिया,
2: हाँ
0: दो नंबर के हारमोनिया हो आए।
2: हाँ जोन जोन
0: हाथ पैर सब जुदा जुदा, ऐसी सूरत देख खुदा, हाँ वो मूरत बन ठन के आए, हाथ धरे तो राग सुनाए।
2: हाँ
0: अच्छा तब ठीक है, तुरे जो इच्छा में रहा है उसका बताया हो तो रेडियो सुना की हो ना। ठीक है नमस्कार। हाँ साथी महेश कुमार रहे कोरी जो हिरमिनिया से, तो इसे साथी सुना कैसी 4-15-122 के लाइन में आओ जी। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आपे के प्रिय रेडियो किशोर एफएम 94 मेगाहर्ट्ज़ से। तो साथी आप लोग एकदम तैयारी में आ जाए कार्यक्रम का, जो आप लोग सुना भी जाते हैं देखा भी जाते हैं, तो माँ आप लोग एकदम लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रह जी। हाँ ऑडियो वीडियो दोनों सुना देखा जाते हैं। तो साथी कार्यक्रम जो आप लोगन के पूरे विश्व में जहाँ भी जाओ जी आप लोग कृष्ण सार एफएम में यहाँ कृष्ण सार एफएम से जुड़ा जी, तो आप लोगन का पूरा सवेरे 5 बजे से रात के 10 बजे तक भरपूर मनोरंजन सूचना समाचार हर चीज़ के दुख सुख के सब आप लोगन का इमा अपडेट मिलते रहे। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 4-15-122 के लाइन में, ऐसे हमारे हाथ में मैसेज आएगा है मैसेज भेजे वाले साथी ही लिखेंगे। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है ये मैसेज भेजे वाले हैं लिखेंगे। सबसे पहले मियाँ जी आपके आवाज़ की तारीफ जितना भी किया जाए उतने कम है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छा लागत है धन्यवाद है। ये मैसेज भेजे वाले हैं कृष्णा परियार जो नेपालगंज घरबाई टोल से संगम टेलर से, ये कहने की कोई भी प्यारा से गाना सुनाए दिया जी। और गाना सुनने वाले साथी हैं मोहम्मद अफरोज खान हैं, ऐसे कहने सुभाष हैं, पूरे रेडियो परिवार का सुनाओ चाहते हो जहाँ तक आपके रेडियो बाजत है हमका कृष्णा कह के चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनावा चाहते धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजी नहीं है लेकिन ये सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार इनके ठिकाना है दिलबहार खां जो वार्ड नंबर 4 बठवा से मैसेज भेजी नहीं, इन्हों कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुनाई दिया जी मियाँ साहेब। ठीक है हमरे जो मुन्ना जी के भी कव्वाली के फरमाइश है, आपके कव्वाली के फरमाइश है सकबर हम आपका अल्ले जाने कौन बसर है कव्वाली हम जो फरमाइश करें का हम आपका जरूर सुनाई देवे। कहने हमका दिल बाहर के चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनाओ चाहते हैं। इससे नान बाबू पौना पान भंडार जो खजुरा बाजार से मैसेज भेजी नहीं है लिखी नहीं मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है। कहने कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है मियाँ जी, आपके कार्यक्रम जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है, तो अब सिख बजे वाला कोई भी गाना भक्ति भजन नात कवाली जो आप बजावा जी, तो हमका नान बाबू पौना के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का घर परिवार माँ जितने हैं सब लोगन का सुनाओ चाहते। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जाए प्यारा से सदाबहार गाना प्यार पे जोर नहीं कोई।
3: कोहलपुर क्षेत्रमा शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बन्दै गएको डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षामा विशेष जोड दिँदै आएको छ। यहाँको अनुशासित वातावरण र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धतिले सिकाइलाई सहज र प्रभावकारी बनाएको छ। डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसको मुख्य विशेषता भनेको अनुभवी शिक्षकहरू, अनुशासित वातावरण र अत्याधुनिक डिजिटल शिक्षण पद्धति हो। क्याम्पसले हरेक कक्षामा स्मार्ट बोर्ड मार्फत आधुनिक ढङ्गले अध्यापन गराउँदै आएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले यस संस्थालाई बढी रुचाउने गरेका छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि डाइनामिक बहुमुखी क्याम्पसले व्यवस्थापन संकायतर्फ बीबीएस र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फ बीएड कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँ कम सुलभ शुल्कमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै विद्यार्थीको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न तालिम सेमिनार र कार्यशाला गोष्ठीहरू नियमित रूपमा आयोजना गरिन्छ। विशेष गरी स्नातक तहको तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै पढ्दै कमाउँदै भन्ने अवधारणा अनुरूप रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने र रोजगारदाताहरूसँग समन्वय गरी उनीहरूको भविष्य सक्षम बनाउने प्रयास क्याम्पसले गरिरहेको छ। यस संस्थाले विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै बिहान 6 बजेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्याम्पस भित्रै क्यान्टिनको व्यवस्था गरी सुरक्षित वातावरण प्रदान गरेको छ। 15 वर्षदेखि निरन्तर अध्यापन गराइरहेका अनुभवी प्राध्यापकहरूको संलग्नताले गर्दा यहाँको शिक्षाको गुणस्तर थप सुदृढ बनेको छ। भविष्य निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको यस संस्थाले यस क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको विश्वास जित्न सफल भएको छ।

0: हाँ तो श्रोता ये मैसेज मारा है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, खैर गाना बहुत अच्छा रहा है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसे 415 सेवा इसके लाइन माँ कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है। कोई साथी हैं देखी को कहाँ से, नमस्कार।
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: आपके नाम?
1: राम खिलावन थारू जमनी सतपुतिया।
0: राम खिलावन थारू, और राम खिलावन
1: सब बढ़िया है?
0: सब बढ़िया हो चाहिए ना। तो कार्यक्रम शुरू से सुना था कि सोई के रहा आज यू?
1: मैं सोए ना हम पास में बढ़िया से ना पूछ पाए हम एक खबर के।
0: अच्छा तो सुनो ना। हाँ। जैसे एक फूल है काले रंग का।
1: हाँ।
0: एक फूल है काले रंग पर सिर पर सदा सुहाए।
1: हाँ।
0: एक फूल है काले रंग का सिर पर सदा सुहाए, तेज धूप में खिलखिल जाए और छाही में मुरझाए। इका नहीं बुझे हो कि दोसर का?
1: दोसर का इका तो बुझे।
0: अच्छा दोसर का। हाथ पैर सब जुदा जुदा, मैंने हाथ पैर सब अलग अलग है,
1: अलग अलग
0: हाथ पैर सब जुदा जुदा, ऐसी सूरत दे खुदा।
1: हाँ
0: जब वो मूरत बंठन आए, हाथ धरो तो राग सुनाए।
1: ये तो पहले नंबर के छतरी हो।
0: हाँ।
1: दूसरे नंबर के जो किंगरी है ना बजावत वहाँ
0: बगल भी है ना?
1: बगल बेंद कहो तो है, एक तारे कहो तो है, सरंगी कहो बगल बेंद। और एक छोट फरमाइश है, हमारे सावन के झूलों में हमको झुलाया कोई परदेसी घर वापस आया।
0: कौन गाना?
1: अरे निगाहे फिल्म के
0: कसके कहे हो तो नहीं फिर से कहो।
1: सावन के झूलों में हमको झुलाया कोई परदेसी।
0: सावन के झूलों में आए। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया
1: कोई परदेसी घर वापस
0: आया। ए सही घर राग न बनाओ नहीं भौजी पछवे ठाड़ी है।
1: हाँ वही
0: बैठे हो। अगर वही बैठिए। हाँ भौजी का हमारा राम राम कह दियो ना।
1: हाँ
0: ना
1: तुम बड़े हुई हो।
0: हाँ
1: तुम बड़े हुई हो तो
0: अब अल्लाह जाने बड़े। अरे कोई कहीं हाँ रेतु तो नहीं कही थे
1: तो छोटकी कह दियो तो कहाँ हुई।
0: छोटकी बहुरिया ना?
1: हाँ
0: कि छोटकी पटैया।
1: हाँ
0: तो ले ले छुटकी पटैया आज से कहीं ना। हाँ छुटकार है छुटकी पटैया कहाँ गए। ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी मेरे बहुत पुराने नेवी श्रोता हैं राम खिलावन थारू जो जमनी सतपुतिया बर्दिया से रहा है। तो साथी ऐसे सुने कैसी 415 122 के लाइन में आ जाए कार्यक्रम जो आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर गुंज रहा है चेतना के धुन झंझन। हाँ साथी हुई कृष्ण सार FM जो आप लोग का सुना भी जाते देखा भी जाते। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के, जहाँ से आपका पुरस्कार दिया जी। तो आप लोग नंबर में फटाफट आवा जाए, लगी पे लगाओ, तकदीर का आजमाओ, जीता जाए प्रेज और कृष्ण सार FM से ले जाओ। तो साथी अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, उसके बाद में सुना जाए प्यारा से कजरी गीत।
2: एनसेल पैक किन्नु भयो त सर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: हाँ तो सुरताई प्यारा से जो कजरी गीत सुना गा, खैर बहुत अच्छा रहा है, सावन संबंध के गाना रहा है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुना है 8415 1122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 8415 1122 के लाइन में आवाजी। कैसे कार्यक्रम जब आप लोगों के प्यारा कार्यक्रम है, तो साथी क्वेश्चन सुना जाए। एक फूल है काले रंग का, एक फूल है काले रंग का, रंग का सिर पे सदा सुहाए, एक फूल है काले रंग का सिर पे सदा सुहाए, तेज धूप में खिलखिल जाए, छाही में मुरझाए। एक नंबर माँ है, दूसरे नंबर माँ है, हाथ पैर सब जुदा जुदा, हाथ पैर सब जुदा जुदा, ऐसी सूरत देख खुदा, जब वो मूरत बंठन आए, हाथ धरे तो राग सुनाए। तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। कहाँ से दिया जी, तो आप लोग जाना जाते माना जाना हुआ ज्योति टेलर सदर लाइन माँ है, वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो ऐसे हमारे हाथ में मैसेज आएगा है, लेकिन ये सबसे पहले मियाँ साहेब अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम मियाँ जी, आपके हाल पता कुछ नहीं मिला थे, बहुत ढेर दिन हो गया है, और हाँ मैसेज वगैरह हम रहन है और मैसेज पठे नहीं मिला रहा है, मैसेज पठवा है तो ठीक है, आपके मैसेज तो हम लोग पावागा। तो इनके ठिकाना है घरवाई टोल नेपालगंज बाके दुसे, हाँ रहीस खां जी कहने की आपके आवाज़ आपके बोली बहुत अच्छा लागत है, और कोई दिन आवा जाए बैठा जाए तो नहीं चाय पानी हो जाए, दीदार हो जाए, मुलाकात हो जाए, ठीक है रहे जी अबे, मगर गाना कहने हाँ बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, चंदा जी गाना के बोल लिखे ने, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। या तो ये गाना सुना दिया जी, या तो गाना सुना दिया जी हाँ कोई दोस्ती संबंध के गाना दोसर, और नहीं तो हम तो यही कहता है बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत हो रहे जी दोस्ताना हमार, तुहार सलामत है जहाँ भी रहा जी, याद हम अपने दिल से करी थे, बजानो अपने दिल में हम आपका याद किया, आप हमका याद किया गा, बजानो दोस्ती हमार आपके सलामत है। अब का किया जाए, देर सवेर भेंट नहीं होत है, तो ये कहने की अब सिख बजे वाला ये गाना सुनाया जाए जी, हमका रहीस खां कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनावा चाहिए थे, धन्यवाद है रहीस जी। ऐसे मैसेज आपकी जारी रही, आपके मैसेज हमरे थीर आवा करी, तो हम आपके मैसेज से आपके हाल पता और हमार हाल पता आपका सब बरकरार रही। और या तो कहने दिल कहे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह पे कहीं पे नहीं, मगर सबसे प्यारा गाना हमका बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सुनाए दिया जी। मियाँ साहब आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही विनती है, आपसे यही गुजारिश है, ठीक है हम आपका ही गाना बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा ही गाना हम जरूर सुनेंगे। और कहने मियाँ जी आपका आपके पूरे रेडियो परिवार का और जत्ते चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का ठीक है रहे जी। ऐसी दोसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजी है जेसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से मैसेज भेजी ने अमर लाल सोनी जी लिखी। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार, तो नमस्कार है और नमस्कार हाँ नमस्कार के नमस्कार के जवाब दे दिन, खुश रहो आबाद रहो, चाहे नेपाल में रहो चाहे इलाहाबाद रहो। तो ये कहीं अब सिख बजे वाला गाना सुनाए दिया जी, कोई एक अपने मन पसंद के गाना सुनाए दिया जी, हमका अमर लाल सोनी कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनावा चाहे थे, जैसे रघुनाथपुर के अशोक सोनी, कुड़वा क्यों कारना सोनी, प्रेमलाल, आरती, पूजा, ज्योति, सीता, गीता, अंजनी, तमाम साथी लोगन का। तो साथी ऐसे अब हमरे कार्यक्रम के समय एकदम 2 बजे के होएगा है, तो पहले हम चले थे टेम चेक के तरफ, टेम चेक के बाद में छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जाए प्यारा से कव्वाली, अल्लाह जाने कौन बसर है कैसे हमरे मुन्ना जी के, उके बाद में हमरे जो साथी लोगन के पाला पाला गाना हम गाना सुनते रहे, टेम रही तो अगर रहेगा गाना तो आपका अगले कार्यक्रम में जरूर सुनेबे। तो हम चले थे व्यापारी विज्ञापन तरफ, 2 बजे के टेम व्यापारी विज्ञापन।
1: कृष्ण सारथ हो यो कृष्ण सारथ। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्रामवा सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 2 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है किसी सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 2 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो के सारे एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो श्रोता ही छोटा सा व्यापारी विज्ञापन 2 बजे के टेम चेक, टेम चेक के बाद ना सुनागा प्यारा से कवाली अल्लाह जाने कौन बसर है। तो साथ ही ऐसे सुने कैसी 4-15-122 के लाइन में आ जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों के प्रिय रेडियो किसी सारे पेम 94 MHz से चलत है जिमा आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। कोई साथी फोन लाइन में है देखी को कहाँ से नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
1: हेलो मियां जी राम राम
0: राम राम राम राम। आपके नाम?
1: घनश्याम पासवान।
0: घनश्याम जी
1: हाँ मियां जी
0: और सब ठीक है?
1: बस आपके दुआ है
0: बस ठीक रहा और का
1: मैं खाली हूँ इस दे हो
0: है
1: हूँ इस देख रही हो
0: अब यहाँ से देव है दुनिया जानी की दीन है।
1: अच्छा
0: नेरे ना यो है। अरे वो तो कोई ना जाए पे आपके दुआ हमार दुआ दोनों मिला के दुनिया जानेगा कि। और बताओ जाए घर परिवार के बच्चे
1: सब आपके दुआ है जिंदगी चलो है कोनो मेर।
0: और हमरे अतुल अतुल
1: सबका बढ़िया है सबका तुम्हारा दुआ है
0: बस अल्लाह पाक सबका एकदम खुशी राख है एकदम ठीक राख है अल्लाह पाक बस यही दुआ है ना।
1: जब देख रही हो तो खुशी रही बे कर बस खुशी और सुखी दोनों रही बे
0: भरा रहा है भंडार बगिया हरी भरी रहा है
1: जब दे हो तब
0: फिर आए जाए सरपुत हाँ तो कहे ने अपन बड़ाई तो दुनिया मांगत है
1: हाँ वहाँ बताएगा हंसा ना करो हाथ दे तो
0: तो हंसी हंसी वाला बात है कि हमरे आए जाओ भैया भतीजा
1: बस खाली भैया भतीजा इसे हुआ से भैया भतीजा अब घर तो भैया भतीजा के है नहीं
0: बा बतासा हम हुए लुटाए दिखो भाई घरे
1: हाँ बो हुए से खाली कई दौर बताओ है तुमका तो उन बताओ हमें
0: हाय
1: कई दौर बनावा है
0: हमरे नंबर में आप फोन करे ना हमारा नंबर तो है तुरे थिर की नहीं है
1: ना ये नंबर दे दियो
0: हाय
1: नंबर बताओ
0: तो अपन नंबर बताओ
1: 98
0: हाँ
1: 155
0: 155
1: 36
0: 1
1: 92
0: ठीक है बे नंबर पठे दी थे ना
1: ठीक है
0: हाँ तो क्वेश्चन के उत्तर दियो महाराज
1: क्वेश्चन के उत्तर ना जाने दे हमका तो गाना सुना दो हम उत्तर बतावे ना आया
0: कौन गाना
1: ओ डाकू हसीना के तो कव्वाली आए की गजल आए जो है
0: हाँ
1: वही का सुना
0: प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर
1: फिर मिलने मिलाने का वादा करो
0: कहा थे वही वाली हाल इशारा हमका जान गया रहन की महाराज के कहा था जौन जौन कही हो मनवे बचनिया
1: मानी हो
0: माना बिल्कुल तो कहा तो जान कुर्बान कह दी
1: जान कुर्बान न
0: ले ठीक है अल्लाह मालिक सबका सलामत रखे भला आज दुनिया के बीच में हसद बोलत तो हो है नहीं
1: दुआ भी है रहा हो
0: हाँ तो वही मैंने अभी दुनिया में आपके आवाज पूरे विश्व में हो
1: सही बात
0: चाहे जहाँ चले जाओ हमरे घनश्याम जी से बोलत हैं मियाँ जी बोलत हैं साथ हैं बतवात हैं तो सब दुनिया सुनत है ना
1: हाँ मियाँ जी
0: तो आज महाराज चल सो हो तुरे गांव में आए
1: हाँ अब गांव के तो न बताए थे लेकिन जेसपुर में है आज
0: पैसा नहीं नहीं देखे
1: तो आओ मियाँ जी
0: पैसा भाई नहीं तो अब वही वाली हाल कहते हैं कि मतलब हम खाई हो का मिठैया तू लुखाई के गोरिया
1: तो कही तो चलो हम दिखा ले तुम आओ तो
0: सब कोई खाई है लड्डू पेड़ा पास नहीं रुपया अठेलुआ अपने गरज के साथ ही ना दिया है रुपया खाई हो मतलब हम का मिठैया तू लुखाई के गोरिया
1: जी हम
0: ठेलुआ
1: ना
0: हो कि भले हो ले ठीक है ना
1: ठीक ठीक है ठीक है
0: नमस्कार
1: नमस्कार राम राम
0: राम राम हाँ साथी हमरे बहुत पुरान श्रोता राम रे घनश्याम पाठक जी गईने डाकू हसीना के गाना चंदा जी प्यार के मोड़ पर मिल गए हो, अगर आज मिलने मिलाने का वादा करो। ठीक है साथी, हम आपका ये गाना सुने रहे, हम चले थे पहले छोटा सा ब्रेक तरफ।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्। तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: ओहो सर, कार्यक्रमको सबै तयारी त भयो, तर कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन, के गर्ने होला?
4: किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, न्यू कैलाश दर्शन होटल छँदैछ नि।
3: कस्तो होटेल हो कुन्नी? हामीले खोजेको सुविधाहरू छ कि छैन?
4: किन नहुनु, ल सुन्नुहोस्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गेटदेखि 500 मिटर पूर्व रहेको यस होटलमा त गाडी पार्किङको सुविधा भएको, एसी रुमको व्यवस्था भएको, क्याबिन सहितको रेस्टुरेन्ट भएको, कार्यक्रमका लागि हल अनि अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा खानेकुराको साथै बसोबास पनि व्यवस्था रहेको छ। एनिभर्सरी, बर्थडे तथा विशेष पार्टीको अवसरमा 15% विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ।
3: यति सुविधा पाएपछि त अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
4: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98 4 57 4 66।
3: परीक्षा पनि पास भइयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
5: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
5: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित AC कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
4: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS तथा ACCA कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 5 80 36 5 77, 98 5 80 28 195 र 98 5 80 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस NMC, सफल भविष्यको बलियो आधार।
6: भर्ना खुल्यो।
7: यस ब्राइटल्यान्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि त्रिवीबाट सम्बन्धन प्राप्त व्यवस्थापन तथा मानविकी संकाय अन्तर्गतका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा भर्ना खुला भएको जानकारी गराइन्छ।
6: उपलब्ध कार्यक्रमहरू ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट BHM, ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट BITM, ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज BBS, ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क BASW।
7: योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्लस टू वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोकेको न्यूनतम GPA प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने।
6: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड कलेज?
7: BHM ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट, अनुभवी शिक्षकद्वारा व्यवहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा, इन्टर्नसिप तथा रोजगारीमा सहयोग, होटल, एयरलाइन्स, रिसोर्ट, क्रुज लाइन लगायत आतिथ्य क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी र होटल फ्रन्ट अफिस, फुड एन्ड बेभरेज, इभेन्ट व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान।
6: BITM ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट, सूचना प्रविधि र व्यवस्थापनको उत्कृष्ट संयोजन, सफ्टवेयर डेभलपर, IT म्यानेजमेन्ट, डाटा विश्लेषक लगायतका क्षेत्रमा करियर, आधुनिक प्रविधि तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्रका लागि बलियो आधार।
7: BBS ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज, राष्ट्रिय विश्वविद्यालयद्वारा मान्यता प्राप्त लोकप्रिय कार्यक्रम बैंकिङ, व्यवसाय, लेखा, वित्त, मानव संसाधन तथा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर र व्यवस्थापन, वित्त, बजार व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी सुदृढ आधार
6: बिएएसडब्ल्यू ब्याचलर अफ आर्ट्स इन सोसल वर्क गैर सरकारी संस्था एनजिओ अस्पताल विद्यालय तथा सामाजिक संस्थाहरूमा करियरका अवसर समाज सेवा नेतृत्व तथा समुदाय विकास सम्बन्धी ज्ञान र सिप समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर
7: ब्राइटल्यान्ड कलेजका विशेषताहरू अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापक कक्षा कोठामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग एयर कन्डिसनर एसीको सुविधा समय सापेक्ष तथा रोजगारमुखी पाठ्यक्रम इन्टर्नसिप तथा प्लेसमेन्ट सुविधा आधुनिक शिक्षण वातावरण र सफल पूर्व विद्यार्थी सञ्जाल तथा करियर परामर्श
6: नोट बिएचएम र बिआइटिएम को सिमेट फारम पनि खुलिसकेको जानकारी गराइन्छ सम्पर्क ब्राइटल्यान्ड कलेज नेपालगञ्ज 10 पासाङ लामु रोड फोन नम्बर 081-532-07 र 081-535-602 इमेल blc.npj@gmail.com वेबसाइट brightlandcollege.edu.np
8: आज म एकदम खुसी छु
4: हैन आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त
8: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो म त भुल्लिने बाबालाई भनेर जान्छु
4: ए हो र ल ल भन न त तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ हामी पनि जानौ
8: ल सुन त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बिबिएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति एजुकेसनल टुर सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन मोटिभेसनल क्लास आइसिटी क्लास एसी क्लासरुम इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट क्रिकेट मैदान बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप क्यारियर काउन्सिलिङ जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन् यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यहीँ जाने निर्णय गरेँ अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो
4: हो रहेछ एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जिएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु
8: ल सुन त्यसो भए 98580-40388 98-045-086-26 र 98580-85-040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है
4: ल ल हुन्छ हुन्छ ल
9: नमस्ते दाई
10: नमस्ते नमस्ते धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ
9: विदेश नाटकको दाई प्रोसेस गर्दै थिए अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको
10: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि
11: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान
12: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस् ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस् अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो
7: हाम्रा विशेषताहरू
12: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ
7: प्रत्येक दिन पेट छाती मुटु तथा सुगर थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा
12: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा
7: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा
12: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान बाझोपन महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्येबाट उपचार तथा परामर्श सेवा
7: अत्याधुनिक प्रयोगशाला इको कार्डियोग्राम इको ईसीजी डिजिटल एक्सरे सेवा
12: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा
7: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40%-50% सम्म विशेष छुट सेवा
12: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि एनआइसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला कारकान्तो चोक नेपालगञ्ज
7: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822

0: Bunny, extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
3: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैली चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक OPD सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
4: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।
3: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न। यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9840206697, 9850023697 और 9804483697।
5: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
4: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावत रहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
4: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
3: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
4: संपर्क नंबर 081536465, 9249806665 और 9842808465।

0: हाँ तो श्रोता ही प्यारा से गाना सुना गा छोटा सा व्यापारी विज्ञापन और आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो साथी आप लोग नंबर में आवाज आए 0815-122 के लाइन में। हाँ पहला नंबर में है एक फूल ऐसा काले। हाँ कोई साथी मेरे फोन लाइन में है, पहले उनका स्वागत के लिए नमस्कार। नमस्कार
1: नमस्कार मिया जी नमस्कार।
0: आपके नाम?
1: और सुनाओ हाल चाल।
0: हाँ बढ़िया। आपके नाम?
1: नेपाल राजा।
0: नेपाल राजा?
1: हाँ।
0: कि सागर राजा?
1: अरे चाहे जो कह जा रहा हूँ, मुझे नेपाल राजे।
0: नेपाल राजा है नहीं?
1: हाँ।
0: और बताओ राजा?
1: सब बढ़िया है।
0: रानी का सा?
1: रानी ठीक है, जो है पानी मरे।
0: पानी?
1: हाँ।
0: तो तू बैठ खात हो खाना?
1: खाई रहे बढ़िया।
0: अरे यार ना कहा मुँह में पानी आ
1: जाए।
0: कुमड़क बढ़िया तो और बढ़िया रहा था। फूल कहाँ रहा है फूल?
1: अरे वहाँ बगियो में लगवाए रहा तो कहा रहे तो रहे।
0: हम तो अब तो कहाँ हो कहाँ नहीं तो कह भैया एक कई बढ़िया लाया हम खा ली हमारी जियारा बच जाए।
1: अच्छा तो ठीक है, दो ठोर पूरी और चार ठोर गुलगुला और छह ठोर बढ़िया बांध दो, कटोरा में रख दो, बनेगी तो वहाँ देगी वो खाएंगे।
0: क्या बांध दे?
1: अरे यह बनवाए ले तो बगीचा में।
0: अच्छा तो ठीक है ले आए हूँ ना।
1: हाँ
0: और सागर बताओ?
1: सब बढ़िया है। गाना गाया जा समझाने तो थोड़े मुझे गाना सुना देती हूँ। कहा से कि ककलोलू गोसा झंझरिया में ढोड़वाए लो सटरिया में।
0: हाँ
1: ये गाना के नाम है।
0: हाँ
1: जुड़वाई लो सास
0: अटरिया
1: में
0: अटरिया में।
1: हाँ जुड़वाई लो सास अटरिया में ककलोलो घुसा घंघरिया में।
0: ककलोलो घुसा घंघरिया में।
1: हाँ ये गाना बहुत मस्त है, जाते हैं समझे जाते हैं तो कहा था समझे तो सुनाओ।
0: अच्छा ये गाना गलत है ना रेडियो?
1: गलत ना है बढ़िया है सर्च करिए तुरंत से गाना बढ़िया बहुत फर्स्ट गाना है।
0: नायागारी शब्द गलत है ना?
1: वो गलत ना है गाना में है तो लिखा है उसका।
0: अच्छा तो ठीक है टाइम रही तो सुनाए देवे का गाना के का बोल है।
1: ढूंढवाए ले साफ सटरिया में।
0: ढूंढवाए ले आए?
1: हाँ ढूंढवाए ले साफ सटरिया में।
0: अच्छा ठीक है ढुड़वाई लो सास अटरिया में ककलोल घुसल घंघरिया में।
1: हाँ हाँ।
0: अच्छा तो अपने सास का सुनावा चाहा था?
1: अरे हाँ समझाने में जात है लड़की ससुराल तो वही कह रहे मैंने गठरी मुठरी बांध दी हो जाए कि तनी सुनवाई भी है।
0: अच्छा ठीक है ठीक है टेम रही तो सुनाए दे पाला बहन गाना के कहियो है ना।
1: अच्छा ठीक है तुम हो जैसे कतवा बोल।
0: हाँ तो क्वेश्चन के उत्तर दियो।
1: नहीं जान पावा है माफ करो नमस्कार तो ही नहीं पावा हम क्या कर रहा हूँ।
0: तो ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी सागर बहेलिया रहे बिलासपुर बाके से। तो हम चले थे व्यापारी विज्ञापन तरफ।

0: ರಂಗಾ ಉದಯ್ ದೇಸ್ ಮೇರು ಎವರೆಸ್ಟ್
1: ಫಿರ್ತಾ ಫಿರ್ತಾ 20% ಸಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಿರ್ತಾ ಸೈಲೇ ಪಾನಿ ಚಹಾ ಪಾನಿ
2: ಕ್ಯಾಶ್ ಫಿರ್ತಾ ಲಿನು ಭಾಯ್ತಾ
0: एनसेल प्याक किन्नु भयो त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
3: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
4: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
3: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त
4: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ
3: अनकल सेवाहरू
4: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे इसिजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिसा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ
5: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 सम्म साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म
4: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719 98-480-22-229 र 98-605-22-229
6: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास हुए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है
7: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है
6: विशेष सुविधा
7: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए
8: देर न कीन जाए आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी फोन नंबर 081-535-598
9: सुबिसु अपर्च्युनिटी 1962 उत्सवको अवसरमा प्रस्तुत छ सुबिसु अपर्च्युनिटी यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरूले पाउनुहुनेछ 25 MBPS इन्टरनेट र क्लियर टिभीको फुल HD प्याकेज प्रति महिना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD च्यानल भएको क्लियर टिभीको प्याकेज प्रति महिना रु 221 साथै दामी म्युजिकको प्रिमियम प्याकेज 3 महिनाका लागि निशुल्क शर्त र नियमहरू लागू हुनेछ थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np सुबिसु
6: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास हुए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है
7: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है
6: विशेष सुविधा
7: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए
8: देर न कीन जाए आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी फोन नंबर 081-535-598

0: को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबा हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,
1: दिल

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा

0: हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें याद करने की जिद छोड़ दूं।
1: हाँ तो सर तो आपका क्या जाए, कार्यक्रम के एकदम अंत अंत वाहन तो हमरे स्टूडियो के घड़ी माँ 2:57 हो गए हैं। तो साथी कहे से भी कार्यक्रम जो अब हम ये समाप्त करे के टेम आएगा है, हमरे प्रादीप जी जो हमरे इशारा देते हैं कि मियाँ जी कार्यक्रम के समय एकदम ख़त्म है। तो साथी आज के फ़ोन करे वाले साथी हमरे रहे हैं, जैसे पहला कलमा रहा है मुन्ना नौ रहा है जो सलमानी घोसी टोल से, ऐसे महेश कुमार कोरी रहा है और जो हिरमिनिया से, राम खिलावन थारू रहा है जमनी सतपुतिया से, घनश्याम पाठक रहा है पिपरावा से, सागर बहेलिया रहा है बिलासपुर बाके से। साथी आज के क्वेश्चन के सही उत्तर कोई नहीं दिया है, अभी क्वेश्चन अगले सोमवार के हम आप लोगन के यहाँ जो सही कोई बताए दी तब तो ठीक है, ना बताई तब हम आप ही बताएबे। तो आज के विजेता कोई नहीं भा है। तो साथी आज के कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा, आप लोगन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद दी थे। ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दी थे। कार्यक्रम का आइडियो वीडियो माँ पठैन जो हमरे प्रादीप माँ चंदा जी पूरे विश्व में दिल लगाए के, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दीते है। आप लोगन के जो प्यारा से गाना जो हमरे राम खिलावन थारू के पाला माँ जो आवा रहा है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, छोड़ते हम संचालक मियाँ जी विदा ली थे, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

पहली मुलाकात में ही हम कितने करीब थे, कभी अजनबी बन जाएंगे ये सोचा न था। मोहब्बत में दूरियां भी मजा देती है ये सुना था, मगर इतने फासले हो जाएंगे ये कभी सोचा न था।

0: गाउँदै देश मेरो एभरेस्ट
1: बीर डेन्टल बीर डेन्टल बीर डेन्टल
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375।
4: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
5: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
4: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
5: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 98-44-88-35-75 और 98-08-25-40-37।
6: नींद ना आए हमको, हाय जग सोता है।
4: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
4: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे, दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 98-480-2697, 98-580-2397 और 98-014-83-697।
8: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
4: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
7: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
4: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
7: सुनो, हुआ औरतन के बाँझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
9: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
7: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वडा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
10: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
11: Back to back. Back to back.
12: In this song on
11: Stay tuned.

0: Sonny Singer, signing off. DC Swag, international vibes. Od PR Karan, keep loving, keep dancing.
1: तो कैसा लगा पूरा सॉन्ग? आई होप आप सबको ये पसंद आया हो। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा गाना एक क्रिएटिव वर्क था। और हाँ, अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप सिर्फ आपके लिए, जहां हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे AI टूल्स एंड प्लगइन्स का यूज करके अपने आइडियाज को एफिशिएंटली एंड प्रोफेशनली शेप दे सकते हैं। चाहे आपको किसी भी प्रकार का कॉन्टेंट बनाना हो या AI की हेल्प से पैसे कमाना हो, आपको कोई भी डिजिटल प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन करना हो, यहाँ आपको सब सिखाया जाएगा। और हाँ, अगर आपने पिछली वर्कशॉप ज्वाइन की थी तो ये वाली वर्कशॉप आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अब डिजिटल जर्नी शुरू करने का टाइम आ गया।
2: बैक टू बैक।

0: एफओ मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: number you are trying to call is currently not reachable.
1: भैया, already 5 महीने हो चुके हैं आपके ब्रेकअप को और आप हैं कि मूव ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहे। बस बहुत हुआ ये रोना धोना, अब जाइए और जल्दी से रेडी होके आइए। आज वो आ रही है, हीना, आपकी बचपन की दोस्त, एंड यू नो शी इज स्टिल अनमैरिड।

वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ मैं, अब उसके आगे कोई वजूद नहीं मेरा, खजाने सी है वो और लूटा हुआ हूँ।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: हेलो। एक्सक्यूज मी, डू यू नो हिम?
1: व्हाट डू यू मीन? ही इज माय फियांसे।
0: व्हाट? यू आर सो लकी। एक्चुअली इन्होंने ही मेरी मदद की थी व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड माय बॉयफ्रेंड लेफ्ट मी अलोन। ही वाज द वन हु हेल्प मी थ्रू ऑल दिस। ही इज सच अ नाइस गाय। You're so lucky to have him.

0: Honey Singer, signing off. This is Swag, International Vibes, on PR Karan. Keep loving, keep dancing.
1: तो कैसा लगा पूरा सॉन्ग? आई होप आप सबको ये पसंद आया हो। लेकिन आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा गाना एक क्रिएटिव वर्क था। और हाँ, अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप सिर्फ आपके लिए, जहां हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे AI टूल्स एंड प्लगइन्स का यूज करके अपने आइडियाज को एफिशिएंटली एंड प्रोफेशनली शेप दे सकते हैं। चाहे आपको किसी भी प्रकार का कॉन्टेंट बनाना हो या AI की हेल्प से पैसे कमाना हो, आपको कोई भी डिजिटल प्रोजेक्ट को स्ट्रीमलाइन करना हो, यहाँ आपको सब सिखाया जाएगा। और हाँ, अगर आपने पिछली वर्कशॉप ज्वाइन की थी तो ये वाली वर्कशॉप आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अब डिजिटल जर्नी शुरू करने का टाइम आ गया।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी